स्पेशल क्लासेस हैं न्यू न्यू नंबर के। हाय गाइस, ये ड्राइवर वाला जॉब कंटिन्यू।

0: इदानीं केचनस्ति इषै पोलन्दल्
1: इद् सर्वदेश कन्नडनिधि ऐ टि आर् साङ्ग् मत्तुम् कन्नडा इदम् वानोलि
0: नेर्गल् इतोडु एलिगल्वै निगल्तेवु मीन्दुम् ओरु
1: इषै कोलत्तिल्
0: उंगलै सन्दिक्कुम् वरै
1: வணக்கம் கூடி இதை தருவது
0: உங்கள் அன்பின் ஜனிதாநாதன்
1: மற்றும் விச்சு நாதன்.
0: நன்றி, வணக்கம்.
1: அன்பான நேயர்களே,